0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत कैथोलिक कलीसिया से विच्छेद एवं पुनः वापसी पर एक संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। लेफेब्र विवाद 38 साल बाद फिर हुआ, यह एक मुश्किल इतिहास है, एक दर्दनाक घटना जिसमें दो गंभीर दरारें आई हैं, जिनकी वजह से महाधर्मदूत मार्सेल लेफेब्र द्वारा बनाई गई संत पापा पियूस 10वें की आज की सोसाइटी ने खुद को पोप एवं रोम की कलीसिया से अलग कर लिया है। यह बात वैटिकन संचार विभाग के संपादक के निदेशक आंद्रिया तोर्नेली ने अपने एक लेख में लिखी। कैथोलिक कलीसिया में एक नए विभाजन की आशंका जताते हुए पोप लियो 14वें ने 29 जून को संत पियूस 10वें की आज के सोसाइटी के सुपीरियर जनरल को एक पत्र भेजा था और कहा था कि परमधम पीठ के आदेश के बिना 1 जुलाई की सुबह स्विट्जरलैंड के इकोन में होने वाला 4 नए धर्माध्यक्षों के अभिषेक में आगे न बढ़ें। पोप लियो ने लिखा, ख्रिस्त प्यार से भरकर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और पूरे दिल से आग्रह करता हूँ, कृपया वापस आइए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप विश्वासों की आध्यात्मिक भलाई के बारे में ध्यान से सोचें, क्योंकि आप जो फूट डालने वाला कृत्य करने वाले हैं वह उन्हें उन संस्कारों को वैध एवं कुछ मामलों में मान्य रूप से ग्रहण करने से वंचित कर देगा जिन्हें वे प्यार करते हैं और अपनी पौत्रता के लिए लेना चाहते हैं। इसके बावजूद स्विट्जरलैंड के संत पियूस 10वें की आज के सोसाइटी के मुख्यालय में धर्माध्यक्ष अल्फोंसो दी गलारेत्ता और धर्माध्यक्ष बर्नार्ड फेल्ले ने धर्माध्यक्षों के अभिषेक की अध्यक्षता की और सुपीरियर जनरल ने घोषणा की कि इस काम के लिए लगाई गई किसी भी सजा या निंदा की कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने अभिषेक को अपनी सोसाइटी की निरंतरता एवं जिंदा रहने के लिए जरूरी बताया, जबकि परमधम पीठ ने बातचीत की कोशिश की। इस तरह 1 जुलाई को 4 धर्माध्यक्षों के अभिषेक के साथ ही संत पियूस 10वें की आज के सोसाइटी रोम की कलीसिया से अलग हो गए। संत पापा पॉल षष्ठम एवं संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की बड़ी कोशिशों एवं संत पापा बेनेडिक्ट 16वें द्वारा लगाए गए एक बहिष्कार को हटाने के फैसले एवं पोप फ्रांसिस द्वारा दी गई सुविधाओं और परमाध्यक्ष की मर्जी के खिलाफ किए गए गैर कानूनी अभिषेक के कारण सोसाइटी एक बार फिर रोम की कलीसिया से अलग हो गई। 1 जुलाई को हुई दरार के गंभीर नतीजे न केवल महाधर्माध्यक्ष लेफेब्रे के धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों के लिए बल्कि विश्वासियों के लिए भी है, क्योंकि जैसा कि धर्म के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के व्याख्यात्मक नोट में कहा गया है कि आज के सोसाइटी के पुरोहित गैर कानूनी तरीके से संस्कार देते हैं और उनके द्वारा दिया गया पाप स्वीकार संस्कार एवं शादी संस्कार अमान्य है। द्वितीय वैटिकन महासभा के दौरान फ्रेंच महाधर्माध्यक्ष मार्सेल लेफेब्रे ने कुछ सुधारों का विरोध करने वाले अल्पमत होने के बावजूद धर्म विधि पर संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता पर घोषणा दोनों पर हस्ताक्षर किए। 1970 में इकोन में संत पापा पियूस 10वें की सोसाइटी की स्थापना के बाद महाधर्माध्यक्ष लेफेब्रे ने नए मिस्सा ग्रंथ के अनुसार पौत्र मिस्सा अर्पित करने से इनकार कर दिया और 1974 में उन्होंने महासभा के सुधारों को कलीसिया के लिए नुकसानदायक नई पद्धति कहा। धर्म प्रांत ने सोसाइटी से अपनी मान्यता वापस ले ली, लेकिन संत पापा पॉल षष्ठम ने बातचीत की मांग की और सेमिनरी को बंद करने का अनुरोध किया। बार बार मना करने के बाद महाधर्माध्यक्ष लेफेब्रे को याजक पद से निलंबित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से मिस्सा समारोह का अनुष्ठान करना जारी रखा। 1976 में कस्तेल गंदोल्फो में संत पापा पॉल षष्ठम के साथ मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। संत पापा ने दार्शनिक जीन ग्विटन के साथ अपने परमाध्यक्ष पद के पहले सच्चे क्रूस का अपना दर्द साझा किया, हालांकि उनका इरादा गैर सामुदायिकता को औपचारिक बहिष्कार में बदलने का नहीं था। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के चुनाव के साथ लेफेब्रे ने ज्यादा खुलापन दिखाया। 1980 में उन्होंने घोषणा की कि उन्हें नए परमाध्यक्ष की वैधता पर कोई शक नहीं है। अप्रैल 1988 में कार्डिनल जोसेफ रात्सिंगर ने महाधर्माध्यक्ष के साथ 3 दिन की बातचीत की अगुवाई की और एक सामान्य प्रोटोकॉल पर पहुंचे, जिस पर 5 मई को हस्ताक्षर किया गया। संत पापा पियूस 10वें की सोसाइटी ने कलीसिया एवं परमाध्यक्ष के प्रति वफादारी का वादा किया।
महासभा की शिक्षा को स्वीकार किया और संत पापा पौ षष्ठम एवं संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के रीति रिवाजों के अनुसार बौद्ध मिसा की वैधता को मान्यता दी। इसमें याजकीय सोसाइटी से एक धर्मदक्ष के अभिषेक का भी इंतजाम किया गया। इस तरह सब कुछ तय लग रहा था, लेकिन 6 मई 1988 को महाधर्मदक्ष लेफेब्रे ने समझौता वापस ले लिया और बिना किसी परमादक्ष आदेश के नए धर्मदक्षों के अभिषेक का अपना इरादा बताया। उन्हें डर था कि रोम याजकीय सोसाइटी के अंदर से उम्मीदवारों को नहीं चुनेगा। एक और मीटिंग एवं कार्डिनल रात्सिंगर के टेलीग्राम के बाद, जिसमें क्रिस्ट एवं उनकी कलीसिया के प्यार के लिए याचना की गई थी कि वे अभिषेक को छोड़ दें, 30 जून 1988 को महाधर्मदक्ष लेफेब्रे ने ब्राजील के धर्मदक्ष अंतोनियो दी कास्त्रो मेयर के साथ मिलकर 4 नए धर्मदक्षों का अभिषेक किया। लेफेब्रियन सैद्धांतिक स्पष्टता की कमी का हवाला देते हैं और यह मांग करते रहे हैं कि कलीसिया महासभा के कुछ हिस्सों को छोड़ दे। 2 फरवरी 2026 को संत पापा पियूस 10वें की सोसाइटी ने 1 जुलाई के लिए नए धर्मदक्षों के अभिषेक की घोषणा की। 12 फरवरी को याज के सोसाइटी के सुपीरियर फादर डेविड पालियारानी का रोम में कार्डिनल विक्टर मानुएल फर्नांडिस ने स्वागत किया। बातचीत की अपील एवं बुलावे के बावजूद लेफेब्रियंस आगे बढ़े और एक नया बंटवारा कर दिया, लेकिन कार्तिक कलीसिया अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। उसने अपना द्वार खुला रखा है। विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग ने दुनिया भर के धर्मदक्षों को एक संदेश भेजा है, जिसमें बताया गया है कि उन लोगों का स्वागत कैसे किया जाए जो संत पियूस 10वें की याज के सोसाइटी को छोड़ने और रोम की कलीसिया में वापस लौटने का फैसला करते हैं। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत कार्तिक कलीसिया से विच्छेद एवं उसमें पुनः वापसी पर एक संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत कर रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका मिलन। लेखक हैं माइकल होजेस। श्रोताओं, स्नेह, आत्मीयता, त्याग, उत्सर्ग, सेवा, उदारता, क्षमा आदि अनेकों गुणों पर दाम्पत्य जीवन की नींव लगती है। एक तरफ सुख के साधनों के साथ स्नेह, प्रेम और आत्मीयतापूर्ण भावनाएं परिवार को स्वर्ग बना देती है, तो दूसरी तरफ पति पत्नी की परस्पर आलोचना, एक दूसरे के प्रति कट्टरता और अविश्वास की भावना भी गृहस्थी को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। जब पति पत्नी एक दूसरे के चरित्र, व्यवहार, रहन सहन पर संदेह करने लगते हैं, तो पारस्परिक मधुर संबंधों के बीच गहरी खाई पैदा हो जाती है और वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इससे दाम्पत्य जीवन की सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसका असर बच्चों को भुगतना पड़ता है। वे बचपन से ही माता पिता को सिर्फ झगड़ते हुए देखते हैं। एक लड़का जिसका पालन पोषण ऐसे माहौल में होता है, वह बड़ा होकर क्रोध करने वाला मनुष्य बन जाता है। उसी तरह एक लड़की जिसकी परवरिश ऐसे माहौल में होती है, तो वह बड़ी होकर कड़वी बातें बोलने वाली और गुस्सैल स्त्री बन जाती है। झगड़ते माँ बाप को देखकर वे परिवार बसाना या शादी करने के बारे भी सोचना नहीं चाहते। लड़के प्रायः घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं। ऐसे दंपति अपना दाम्पत्य जीवन तो बर्बाद करते ही हैं, अपने बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। अतः समय रहते संभल जाएं, पति और पत्नी अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, क्योंकि नम्रता, सहिष्णुता और उदारपूर्ण क्षमा से ही दाम्पत्य जीवन निभता है। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है माइकल होजेस की लिखी नाटिका मिलन।
1: आप बाजार जा रहे हैं?
2: क्यों, ये जरूरी है क्या कि मैं तैयार हूँ? तो मतलब है मैं बाजार ही जा रहा हूँ, क्या मैं कहीं और नहीं जा सकता?
1: तो मुझे क्या पता कि आप बाजार नहीं बल्कि कहीं और जा रहे हैं?
2: तो फिर पहले पूछना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं।
1: वह भी पूछ कर देख चुकी हूँ। पता है आपने क्या कहकर मुझे डांटा कि तुम्हें क्या पंचायत है, मैं कहीं भी जाऊँ?
2: तो आदमी का मूड देखकर पूछना चाहिए ना।
1: वाह, ये भी खूब रही। पहले मैं इनका मूड देखूं, फिर जाकर कुछ पूछूं, वो भी मूड सही होने पर।
2: तुमसे तो बाल की खाल निकलवा लो बस। अरे अगर इतना ही दिमाग अपना तुम अब चलाती हो और लगाती हो, तो बात को खुद ही समझ लो है कि किसी और को समझाने की जरूरत ही ना पड़े।
1: हाँ हाँ, सारी समझदारी का ठेका तुमने ही जो ले रखा है ना।
2: आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो तुम।
1: और आप तो जैसे मुंह में दही जमा कर बैठे रहते हो।
2: अब अपनी बकवास बंद करोगी तुम?
1: क्या, आप कहें तो बोलना और मैं कहूँ तो बकवास है।
2: आजकल तुम्हारा मुंह तो कैंची से भी तेज चलने लगा।
1: अगर किसी बात का जवाब देना, मुंह चलाना है, तो फिर इस दुनिया में सारे लोग मुंह चलाते हैं।
2: एक जवान लड़की की माँ हो गई हो, लेकिन पति की इज्जत करना अब तक नहीं सीखा तुमने।
1: आपने कुछ सिखाया ही नहीं। अगर सिखाते तो क्या मैं सीखती नहीं?
2: तुम न केवल मुंहजोर हो बल्कि बेशर्म भी हो।
1: अब जो भी कुछ हूँ, सब आप ही की तो देन हूँ।
2: तुमसे तो बात करना ही बेकार है।
1: तो मुझे कौन सा शौक है आपसे बात करने का?
3: मम्मी, शाम को क्या बनाना है?
1: जो तुझे अच्छा लगे बना लेंगे।
3: अरे मुझे बनाना होता तो क्या मैं आपसे पूछती?
1: देख, अगर भिंडी अच्छी हो तो साफ कर ले, वही बना लेंगे।
3: हाँ ठीक है, अगर आज नहीं बनी तो कल तक तो पक्का सड़ जाएगी।
1: तेरे पापा से बड़ी बड़ी बातें सुन लो, दूसरों को ज्ञान बांटते फिरेंगे, लेकिन खुद ज्ञान से गरीब ही हैं। अब बता साक्षी, कल ही वे सब्जी लाए और आज सब्जी खराब हो गई। सब्जी लाना तो आता नहीं।
3: अब सब्जी तो है मम्मी, कोई घास फूस तो नहीं।
1: लेकिन सब्जी के नाम पर क्या उठा कर लाए हैं, सड़ी गली सब्जी, क्या आंख बंद करके खरीद रहे थे?
3: छोड़ो भी मम्मी, क्या लेकर बैठ गई हो आप।
1: अरे अगर अभी मैं ऐसी सब्जी ले आती तो तेरे पापा तो सारा घर सिर पर उठा लेते, अपनी चलाने में तो सबसे आगे हैं।
3: जैसे पापा के बारे में आपके विचार हैं, वैसे ही पापा आपके बारे में सोचते होंगे, इसीलिए तो आजकल आप दोनों में बहुत झगड़ा होने लगा है।
1: झगड़ती मैं नहीं बेटा, तेरे पापा ही शुरू करते हैं।
3: और पापा से पूछो तो पापा आपका नाम लेते हैं। पता नहीं आप दोनों का बुढ़ापा साथ में कैसे गुजरेगा।
1: अगर उनके रंग ढंग नहीं सुधरे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और पढ़े रहे फिर यहाँ अकेले और करते रहे मनमानी। कोई नहीं पूछेगा, कुछ नहीं कहेगा।
3: अब तो भगवान ही मालिक है आप दोनों का।
2: साक्षी, बेटी तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है?
3: साफ साफ कहूँ तो अच्छी नहीं चल रही, बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही।
2: क्यों, ऐसी क्या बात है? अगर किसी तरह की परेशानी है तो कोचिंग क्लास चली जा।
3: अगर कुछ समझने में कठिनाई होती तो मैं कोचिंग क्लास चली जाती, लेकिन परेशानी तो आपसे और मम्मी से है।
2: हम दोनों से? हम दोनों ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि उससे तेरी पढ़ाई खराब हो रही है?
3: आप दोनों की रात दिन चलने वाली किचकिच। पापा, आपने कभी ये नहीं सोचा कि अब मैं बच्ची नहीं रही हूँ, बड़ी हो गई हूँ और सब कुछ मैं भी समझने लगी हूँ, लेकिन फिर भी आप दोनों बिना मेरी परवाह किए झगड़ने लग जाते हैं?
2: हाँ बेटा, ये बात तो हमने कभी सोची ही नहीं।
3: बिना इस बात की परवाह किए कि इस आप दोनों के झगड़ों का मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
2: सच है बेटी, हम दोनों ही स्वार्थी हैं।
3: आप लोगों ने ये कभी नहीं सोचा कि जब मैं शादी करके चली जाऊंगी तो आप दोनों कैसे रहेंगे?
2: हाँ बेटी, ये बात भी है।
3: और अब सोचने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं शादी ही नहीं करूंगी।
2: ये तूने क्या सोच लिया है बेटी?
3: हाँ पापा, अब दोनों को ही हर समय झगड़ते देख मैंने यह फैसला किया है कि जब आदमी औरत में आप दोनों की तरह झगड़ा ही होता रहेगा तो फिर शादी करने का क्या फायदा।
2: ये तेरी गलत फहमी है बेटा कि शादी के बाद पति पत्नी केवल झगड़ते ही रहते हैं।
3: मगर मैं तो बचपन से लेकर अब तक यही देखती आ रही हूँ।
2: मैं तुझसे वादा करता हूँ बेटा कि मैं अब तेरी मम्मी से कभी भी झगड़ा नहीं करूंगा।
3: गुड, यह हुई ना अच्छे पापा वाली बात।
2: लेकिन तेरी शादी वाली बात
3: अभी मम्मी को भी सुनाना बाकी है।
4: यार, तुम्हारी सारी बातें सुनकर मैं तो तुम्हें यही सलाह दे सकता हूँ कि जैसे तुमने बेटी से माफी मांगकर बात को खत्म करने की कोशिश की है, वैसे ही भाभी से भी माफी मांगकर बात को खत्म ही कर डालो।
2: मगर यार, क्या ये अच्छा लगेगा कि मैं उससे माफी मांगू?
4: और जब तुम भाभी से झगड़ा करते थे तब क्या अच्छा लगता था?
2: अच्छा, अगर मैंने तुम्हारी भाभी से साहब माफी मांग ली और उसके बाद भी अगर उसने झगड़ा किया तो?
4: भाभी तुमसे झगड़ा नहीं करेगी। माफी में वो जादू होता है कि पहले ना करने वाला भी हाँ कर देता है। तुम जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो।
2: ठीक है यार, आजमा कर देखता हूँ। सुनो सुजाता, मैं आज तक अपने किए सभी बुरे बर्ताव के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ।
5: ये आप क्या कह रहे हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपसे बहुत बदतमीजियाँ की है, आपका अपमान किया है, मुझे माफ कर दीजिए।
2: मैं अब तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूँगा।
5: और मैं भी आपको पति का पूरा सम्मान और प्रेम दिया करूँगी।
3: इस घर में मैं यही सब कुछ चाहती थी, मम्मी पापा का मिलन।
5: हमारी ओर से अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी बेटा।
3: पता है, जब मैं दूसरों के मम्मी पापा को प्यार से बातें करते, हंसी मजाक करते देखती थी तो मैं यही सोचती थी कि मेरे मम्मी पापा ऐसे क्यों नहीं रहते।
2: अब तेरे मम्मी पापा भी औरों के मम्मी पापा से अलग नहीं है बेटी। इस घर में अब झगड़े के स्वर नहीं बल्कि खुशियों की किलकारियां गूंजेंगी।
5: मैं तेरे पापा का ऐसा ही व्यवहार देखना चाहती थी।
2: और मैं तेरी मम्मी का यही रूप देखना चाहता था।
3: इस घर में अब सब केवल खुशी के रूप में ही दिखाई देंगे क्योंकि मम्मी पापा का मिलन जो हो गया है।
0: मिलन। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे डॉक्टर भावना प्रधान, दिव्या शूलिया, निर्विकार मूल्य और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।
6: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesantpetro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत कैथोलिक कलीसिया से विच्छेद एवं पुनः वापसी पर एक संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। लेफेब्र विवाद 38 साल बाद फिर हुआ, यह एक मुश्किल इतिहास है, एक दर्दनाक घटना जिसमें दो गंभीर दरारें आई हैं, जिनकी वजह से महाधर्मदोष मास से लेफेब्रे द्वारा बनाई गई संत पाप पपियुस 10वें की आज की सोसाइटी ने खुद को पोप एवं रोम की कलीसिया से अलग कर लिया है। यह बात वैटिकन संचार विभाग के संपादक के निदेशक आंद्रिया तोर्नेली ने अपने एक लेख में लिखी। कैथोलिक कलीसिया में एक नए विभाजन की आशंका जताते हुए पोप लियो 14वें ने 29 जून को संत पियुस 10वें की आज के सोसाइटी के सुपीरियर जनरल को एक पत्र भेजा था और कहा था कि परमधम पीठ के आदेश के बिना 1 जुलाई की सुबह स्विट्जरलैंड के इकोन में होने वाला 4 नए धर्मदक्षों के अभिषेक में आगे न बढ़ें। पोप लियो ने लिखा, ख्रिस्त प्यार से भरकर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और पूरे दिल से आग्रह करता हूँ, कृपया वापस आइए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप विश्वासों की आध्यात्मिक भलाई के बारे में ध्यान से सोचें, क्योंकि आप जो फूट डालने वाला कृत्य करने वाले हैं वह उन्हें उन संस्कारों को वैध एवं कुछ मामलों में मान्य रूप से ग्रहण करने से वंचित कर देगा जिन्हें वे प्यार करते हैं और अपनी पौत्रता के लिए लेना चाहते हैं। इसके बावजूद स्विट्जरलैंड के संत पियुस 10वें की आज के सोसाइटी के मुख्यालय में धर्मदक्ष अल्फोंसो दी कलारेत्ता और धर्मदक्ष बर्नार्ड फेल्ले ने धर्मदक्षों के अभिषेक की अध्यक्षता की और सुपीरियर जनरल ने घोषणा की कि इस काम के लिए लगाई गई किसी भी सजा या निंदा की कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने अभिषेक को अपनी सोसाइटी की निरंतरता एवं जिंदा रहने के लिए जरूरी बताया, जबकि परमधम पीठ ने बातचीत की कोशिश की। इस तरह 1 जुलाई को 4 धर्मदक्षों के अभिषेक के साथ ही संत पियुस 10वें की आज के सोसाइटी रोम की कलीसिया से अलग हो गए। संत पापा पॉल षष्ठम एवं संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की बड़ी कोशिशों एवं संत पापा बेनेडिक्ट 16वें द्वारा लगाए गए एक बहिष्कार को हटाने के फैसले एवं पोप फ्रांसिस द्वारा दी गई सुविधाओं और परमाध्यक्ष की मर्जी के खिलाफ किए गए गैर कानूनी अभिषेक के कारण सोसाइटी एक बार फिर रोम की कलीसिया से अलग हो गई। 1 जुलाई को हुई दरार के गंभीर नतीजे न केवल महाधर्मदक्ष लेफेब्रे के धर्मदक्षों एवं पुरोहितों के लिए बल्कि विश्वासियों के लिए भी है, क्योंकि जैसा कि धर्म के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के व्याख्यात्मक नोट में कहा गया है कि आज के सोसाइटी के पुरोहित गैर कानूनी तरीके से संस्कार देते हैं और उनके द्वारा दिया गया पाप स्वीकार संस्कार एवं शादी संस्कार अमान्य है। द्वितीय वैटिकन महासभा के दौरान फ्रेंच महाधर्मदर्श मार्सेल लेफेब्रे ने कुछ सुधारों का विरोध करने वाले अल्पमत होने के बावजूद धर्म विधि पर संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता पर घोषणा दोनों पर हस्ताक्षर किए। 1970 में इकोन में संत पापा पियुस 10वें की सोसाइटी की स्थापना के बाद महाधर्मदर्श लेफेब्रे ने नए मिस्सा ग्रंथ के अनुसार पौत्र मिस्सा अर्पित करने से इनकार कर दिया और 1974 में उन्होंने महासभा के सुधारों को कलीसिया के लिए नुकसानदायक नई पद्धति कहा। धर्म प्रांत ने सोसाइटी से अपनी मान्यता वापस ले ली, लेकिन संत पापा पॉल षष्ठम ने बातचीत की मांग की और सेमिनरी को बंद करने का अनुरोध किया। बार बार मना करने के बाद महाधर्मदर्श लेफेब्रे को याजक पद से निलंबित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से मिस्सा समारोह का अनुष्ठान करना जारी रखा। 1976 में कस्तेल गंदोल्फो में संत पापा पॉल षष्ठम के साथ मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। संत पापा ने दार्शनिक जीन ग्विटन के साथ अपने परमाध्यक्ष पद के पहले सच्चे क्रूस का अपना दर्द साझा किया, हालांकि उनका इरादा गैर सामुदायिकता को औपचारिक बहिष्कार में बदलने का नहीं था। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के चुनाव के साथ लेफेब्रे ने ज्यादा खुलापन दिखाया। 1980 में उन्होंने घोषणा की कि उन्हें नए परमाध्यक्ष की वैधता पर कोई शक नहीं है। अप्रैल 1988 में कार्डिनल जोसेफ रात्सिंगर ने महाधर्मदर्श के साथ 3 दिन की बातचीत की अगुवाई की और एक सामान्य प्रोटोकॉल पर पहुंचे, जिस पर 5 मई को हस्ताक्षर किया गया। संत पापा पियुस 10वें की सोसाइटी ने कलीसिया एवं परमाध्यक्ष के प्रति वफादारी का वादा किया।
महासभा की शिक्षा को स्वीकार किया और संत पापा पौल षष्ठम एवं संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के रीति रिवाजों के अनुसार पौत्र मिस्सा की वैधता को मान्यता दी। इसमें याजकीय सोसाइटी से एक धर्मदक्ष के अभिषेक का भी इंतजाम किया गया। इस तरह सब कुछ तय लग रहा था, लेकिन 6 मई 1988 को महाधर्मदक्ष लेफेब्रे ने समझौता वापस ले लिया और बिना किसी परमाध्यक्ष आदेश के नए धर्मदक्षों के अभिषेक का अपना इरादा बताया। उन्हें डर था कि रोम याजकीय सोसाइटी के अंदर से उम्मीदवारों को नहीं चुनेगा। एक और मीटिंग एवं कार्डिनल रात्सिंगर के टेलीग्राम के बाद, जिसमें क्रिस्ट एवं उनकी कलीसिया के प्यार के लिए याचना की गई थी कि वे अभिषेक को छोड़ दें, 30 जून 1988 को महाधर्मदक्ष लेफेब्रे ने ब्राजील के धर्मदक्ष अंतोनियो दी कास्त्रो मेयर के साथ मिलकर 4 नए धर्मदक्षों का अभिषेक किया। लेफेब्रियन सैद्धांतिक स्पष्टता की कमी का हवाला देते हैं और यह मांग करते रहे हैं कि कलीसिया महासभा के कुछ हिस्सों को छोड़ दे। 2 फरवरी 2026 को संत पापा पियूस 10वें की सोसाइटी ने 1 जुलाई के लिए नए धर्मदक्षों के अभिषेक की घोषणा की। 12 फरवरी को याज के सोसाइटी के सुपीरियर फादर डेविड पालियारानी का रोम में कार्डिनल विक्टर मानुएल फर्नांडिस ने स्वागत किया। बातचीत की अपील एवं बुलावे के बावजूद लेफेब्रियंस आगे बढ़े और एक नया बंटवारा कर दिया, लेकिन कार्तिक कलीसिया अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। उसने अपना द्वार खुला रखा है। विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग ने दुनिया भर के धर्मदक्षों को एक संदेश भेजा है, जिसमें बताया गया है कि उन लोगों का स्वागत कैसे किया जाए जो संत पियूस 10वें की याज के सोसाइटी को छोड़ने और रोम की कलीसिया में वापस लौटने का फैसला करते हैं। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत कार्तिक कलीसिया से विच्छेद एवं उसमें पुनः वापसी पर एक संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत कर रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका मिलन। लेखक हैं माइकल होजेस। श्रोताओं, स्नेह, आत्मीयता, त्याग, उत्सर्ग, सेवा, उदारता, क्षमा आदि अनेकों गुणों पर दाम्पत्य जीवन की नींव लगती है। एक तरफ सुख के साधनों के साथ स्नेह, प्रेम और आत्मीयता पूर्ण भावनाएं परिवार को स्वर्ग बना देती है, तो दूसरी तरफ पति पत्नी की परस्पर आलोचना, एक दूसरे के प्रति कट्टरता और अविश्वास की भावना भी गृहस्थी को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। जब पति पत्नी एक दूसरे के चरित्र, व्यवहार, रहन सहन पर संदेह करने लगते हैं, तो पारस्परिक मधुर संबंधों के बीच गहरी खाई पैदा हो जाती है और वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इससे दाम्पत्य जीवन की सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसका असर बच्चों को भुगतना पड़ता है। वे बचपन से ही माता पिता को सिर्फ झगड़ते हुए देखते हैं। एक लड़का जिसका पालन पोषण ऐसे माहौल में होता है, वह बड़ा होकर क्रोध करने वाला मनुष्य बन जाता है। उसी तरह एक लड़की जिसकी परवरिश ऐसे माहौल में होती है, तो वह बड़ी होकर कड़वी बातें बोलने वाली और गुस्सैल स्त्री बन जाती है। झगड़ते माँ बाप को देखकर वे परिवार बसाना या शादी करने के बारे भी सोचना नहीं चाहते। लड़के प्रायः घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं। ऐसे दंपति अपना दाम्पत्य जीवन तो बर्बाद करते ही हैं, अपने बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। अतः समय रहते संभल जाएं, पति और पत्नी अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, क्योंकि नम्रता, सहिष्णुता और उदारपूर्ण क्षमा से ही दाम्पत्य जीवन निभता है। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है माइकल होजेस की लिखी नाटिका मिलन।
1: आप बाजार जा रहे हैं?
2: क्यों, ये जरूरी है क्या कि मैं तैयार हूँ? तो मतलब है मैं बाजार ही जा रहा हूँ, क्या मैं कहीं और नहीं जा सकता?
1: तो मुझे क्या पता कि आप बाजार नहीं बल्कि कहीं और जा रहे हैं?
2: तो फिर पहले पूछना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं।
1: वह भी पूछ कर देख चुकी हूँ। पता है आपने क्या कहकर मुझे डांटा कि तुम्हें क्या पंचायत है, मैं कहीं भी जाऊं?
2: तो आदमी का मूड देखकर पूछना चाहिए ना।
1: वाह, ये भी खूब रही। पहले मैं इनका मूड देखूं, फिर जाकर कुछ पूछूं, वो भी मूड सही होने पर।
2: तुमसे तो बाल की खाल निकलवा लो बस। अरे अगर इतना ही दिमाग अपना तुम अब चलाती हो और लगाती हो, तो बात को खुद ही समझ लो है? कि किसी और को समझाने की जरूरत ही ना पड़े।
1: हाँ हाँ, सारी समझदारी का ठेका तुमने ही जो ले रखा है ना।
2: आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो तुम।
1: और आप तो जैसे मुंह में दही जमा कर बैठे रहते हो।
2: अब अपनी बकवास बंद करोगी तुम?
1: क्या, आप कहें तो बोलना और मैं कहूँ तो बकवास है?
2: आजकल तुम्हारा मुंह तो कैंची से भी तेज चलने लगा।
1: अगर किसी बात का जवाब देना, मुंह चलाना है, तो फिर इस दुनिया में सारे लोग मुंह चलाते हैं।
2: एक जवान लड़की की माँ हो गई हो, लेकिन पति की इज्जत करना अब तक नहीं सीखा तुमने।
1: आपने कुछ सिखाया ही नहीं। अगर सिखाते तो क्या मैं सीखती नहीं?
2: तुम न केवल मुंहजोर हो बल्कि बेशर्म भी हो।
1: अब जो भी कुछ हूँ, सब आप ही की तो देन हूँ।
2: तुमसे तो बात करना ही बेकार है।
1: तो मुझे कौन सा शौक है आपसे बात करने का?
3: मम्मी, शाम को क्या बनाना है?
1: जो तुझे अच्छा लगे बना लेंगे।
3: अरे मुझे बनाना होता तो क्या मैं आपसे पूछती?
1: देख, अगर भिंडी अच्छी हो तो साफ कर ले, वही बना लेंगे।
3: हाँ ठीक है, अगर आज नहीं बनी तो कल तक तो पक्का सड़ जाएगी।
1: तेरे पापा से बड़ी बड़ी बातें सुन लो, दूसरों को ज्ञान बांटते फिरेंगे, लेकिन खुद ज्ञान से गरीब ही हैं। अब बता साक्षी, कल ही वे सब्जी लाए और आज सब्जी खराब हो गई। सब्जी लाना तो आता नहीं।
3: अब सब्जी तो है मम्मी, कोई घास फूस तो नहीं।
1: लेकिन सब्जी के नाम पर क्या उठाकर लाए हैं, सड़ी गली सब्जी, क्या आंख बंद करके खरीद रहे थे?
3: छोड़ो भी मम्मी, क्या लेकर बैठ गई हो आप?
1: अरे अगर अभी मैं ऐसी सब्जी ले आती तो तेरे पापा तो सारा घर सिर पर उठा लेते, अपनी चलाने में तो सबसे आगे हैं।
3: जैसे पापा के बारे में आपके विचार हैं, वैसे ही पापा आपके बारे में सोचते होंगे, इसीलिए तो आजकल आप दोनों में बहुत झगड़ा होने लगा है।
1: झगड़ती मैं नहीं बेटा, तेरे पापा ही शुरू करते हैं।
3: और पापा से पूछो तो पापा आपका नाम लेते हैं। पता नहीं आप दोनों का बुढ़ापा साथ में कैसे गुजरेगा।
1: अगर उनके रंग ढंग नहीं सुधरे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और पढ़े रहे फिर यहाँ अकेले और करते रहे मनमानी। कोई नहीं पूछेगा, कुछ नहीं कहेगा।
3: अब तो भगवान ही मालिक है आप दोनों का।
2: साक्षी, बेटी तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है?
3: साफ साफ कहूँ तो अच्छी नहीं चल रही, बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही।
2: क्यों, ऐसी क्या बात है? अगर किसी तरह की परेशानी है तो कोचिंग क्लास चली जा।
3: अगर कुछ समझने में कठिनाई होती तो मैं कोचिंग क्लास चली जाती, लेकिन परेशानी तो आपसे और मम्मी से है।
2: हम दोनों से? हम दोनों ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि उससे तेरी पढ़ाई खराब हो रही है?
3: आप दोनों की रात दिन चलने वाली किचकिच। पापा, आपने कभी ये नहीं सोचा कि अब मैं बच्ची नहीं रही हूँ, बड़ी हो गई हूँ और सब कुछ मैं भी समझने लगी हूँ, लेकिन फिर भी आप दोनों बिना मेरी परवाह किए झगड़ने लग जाते हैं?
2: हाँ बेटा, ये बात तो हमने कभी सोची ही नहीं।
3: बिना इस बात की परवाह किए कि इस आप दोनों के झगड़ों का मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
2: सच है बेटी, हम दोनों ही स्वार्थी हैं।
3: आप लोगों ने ये कभी नहीं सोचा कि जब मैं शादी करके चली जाऊंगी तो आप दोनों कैसे रहेंगे?
2: हाँ बेटी, ये बात भी है।
3: और अब सोचने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं शादी ही नहीं करूंगी।
2: ये तूने क्या सोच लिया है बेटी?
3: हाँ पापा, अब दोनों को ही हर समय झगड़ते देख मैंने यह फैसला किया है कि जब आदमी औरत में आप दोनों की तरह झगड़ा ही होता रहेगा तो फिर शादी करने का क्या फायदा।
2: ये तेरी गलत फहमी है बेटा कि शादी के बाद पति पत्नी केवल झगड़ते ही रहते हैं।
3: मगर मैं तो बचपन से लेकर अब तक यही देखती आ रही हूँ।
2: मैं तुझसे वादा करता हूँ बेटा कि मैं अब तेरी मम्मी से कभी भी झगड़ा नहीं करूंगा।
3: गुड, यह हुई ना अच्छे पापा वाली बात।
2: लेकिन तेरी शादी वाली बात
3: अभी मम्मी को भी सुनाना बाकी है।
4: यार, तुम्हारी सारी बातें सुनकर मैं तो तुम्हें यही सलाह दे सकता हूँ कि जैसे तुमने बेटी से माफी मांगकर बात को खत्म करने की कोशिश की है, वैसे ही भाभी से भी माफी मांगकर बात को खत्म ही कर डालो।
2: मगर यार, क्या ये अच्छा लगेगा कि मैं उससे माफी मांगू?
4: और जब तुम भाभी से झगड़ा करते थे तब क्या अच्छा लगता था?
2: अच्छा, अगर मैंने तुम्हारी भाभी से साहब माफी मांग ली और उसके बाद भी अगर उसने झगड़ा किया तो?
4: भाभी तुमसे झगड़ा नहीं करेगी। माफी में वो जादू होता है कि पहले ना करने वाला भी हाँ कर देता है। तुम जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो।
2: ठीक है यार, आजमा कर देखता हूँ। सुनो सुजाता, मैं आज तक अपने किए सभी बुरे बर्ताव के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ।
5: ये आप क्या कह रहे हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपसे बहुत बदतमीजियाँ की है, आपका अपमान किया है, मुझे माफ कर दीजिए।
2: मैं अब तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगा।
5: और मैं भी आपको पति का पूरा सम्मान और प्रेम दिया करूंगी।
3: इस घर में मैं यही सब कुछ चाहती थी, मम्मी पापा का मिलन।
5: हमारी ओर से अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी बेटा।
3: पता है, जब मैं दूसरों के मम्मी पापा को प्यार से बातें करते, हंसी मजाक करते देखती थी तो मैं यही सोचती थी कि मेरे मम्मी पापा ऐसे क्यों नहीं रहते।
2: अब तेरे मम्मी पापा भी औरों के मम्मी पापा से अलग नहीं है बेटी। इस घर में अब झगड़े के स्वर नहीं बल्कि खुशियों की किलकारियां गूंजेंगी।
5: मैं तेरे पापा का ऐसा ही व्यवहार देखना चाहती थी।
2: और मैं तेरी मम्मी का यही रूप देखना चाहता था।
3: इस घर में अब सब केवल खुशी के रूप में ही दिखाई देंगे क्योंकि मम्मी पापा का मिलन जो हो गया है।
0: मिलन। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे डॉक्टर भावना प्रधान, दिव्या शूलिया, निर्विकार मूल्य और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।
6: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesantpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: चिरिदोम अवृत होकर न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कन्या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के दूसरा भेद, माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु।

0: दया कर,
1: क्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: क्रिस्त हमारी सुन,
1: क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर,
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: क्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नबियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है
1: प्रभु हमें क्षमा कर,
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है
1: प्रभु हमारी सुन,
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें,
1: हे प्रभु ईश्वर।

0: मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन।
1: पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 5 जुलाई को पोप लियो 14वें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: कारी फ्रेटेली सोरेल्ले बोना डोमेनिका,
0: प्रिय भाइयो एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra.
0: आज के सुसमाचार पाठ में यीशु हमें निमंत्रण देते हैं कि हम उनके साथ पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु की स्तुति करें। ईश्वर के पुत्र ने धन्यवाद के इस कार्य में सभी प्राणियों को शामिल करके मनुष्यों को अपना प्रेम प्रकट किया है। संत पापा ने कहा कि इस तरह के सहज एवं प्रशंसित कार्य की सादगी ईश्वर के काम करने के तरीके को दिखाती है। वे खुद को बच्चों के सामने सहज प्रकट करते हैं, जबकि ज्ञानी और समझदार लोगों से छिपाते हैं, क्योंकि वे अपने विचारों से इतने भरे होते कि ख्रिस्त की उपस्थिति को पहचान नहीं पाते जो अपने लोगों से मिलने आते हैं। इस तरह मानव प्रज्ञा घमंड बन जाती है और सिद्धांत अभिमान में बदल जाते हैं।
1: La vera sapienza di Dio si rivela invece nell'umiltà della carne.
0: इसके विपरीत ईश्वर की सच्ची प्रज्ञा शरीर धारण की विनम्रता में दिखती है, और उनकी शिक्षा सबसे बढ़कर उन लोगों के लिए है जो संघर्ष करते हैं। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। संत पापा ने कहा, यीशु के पास जाने का अर्थ है उनके प्यार का प्रत्युत्तर देना और उनके जीवन में सहभागी होना, क्रूस में भी, जैसा कि वे खुद सिखाते हैं। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले।
1: Proprio il dono di sé per amore è il gioco di Gesù.
0: प्यार से खुद को देना ही यीशु का जुआ है, जो उनकी शिक्षा का सार और उनकी प्रज्ञा का केंद्र बिंदु है, जो सभी के लिए प्यार से भरा हुआ है। पोप ने कहा,
1: Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce il peso della croce?
0: भाइयों एवं बहनों, क्रूस का भार कैसे आसान एवं हल्का हो सकता है? यह सिर्फ एक कारण से हल्का हो सकता है, क्योंकि प्रभु खुद इससे हमारे साथ उठाते हैं। हमें कभी भी उन बोझों में अकेले नहीं छोड़ते जो हमारे ऊपर हैं। एक सच्चे गुरु के रूप में यीशु बुराई से घायल मानवता को अपने ऊपर लेते हैं, ताकि उसे ठीक कर सकें और उसकी देखभाल कर सकें। इसलिए जो प्रज्ञा वे हमें प्रदान करते हैं वह मुक्ति की घोषणा है, और उनका जुआ हमें हर पतन से ऊपर उठाता है। इसलिए ख्रिस्त का अनुसरण करने की हमारी यात्रा कोई ऐसी तपस्या नहीं है जो दुख पहुंचाती हो, बल्कि यह स्वतंत्रता का स्कूल है जो इतिहास के संकट को गंभीरता से लेता और इसके अर्थ पर लगातार प्रकाश डालता है, खासकर इसके सबसे अंधेरे क्षणों में। वास्तव में सिर्फ यीशु के क्रूस से ही बुराई दूर हो सकती है। केवल उनके जुनून में ही हमारे नश्वर थकान को सांत्वना एवं मुक्ति मिलती है। गुलामी में ख्रिस्त मुक्ति है, युद्ध के संकट के बीच ख्रिस्त ही उम्मीद है, पाप के समय ख्रिस्त माफी है। यही सच्ची प्रज्ञा है और यही वह रास्ता है जिन पर हम उनके नाम पर शिष्यों के रूप में एक साथ चलना चाहते हैं। यीशु पिता के बेटे के रूप में हमारा भाई बनकर हमें इसे सिखाते हैं। पौत्र आत्मा की शक्ति से वे कलीसिया को ईश्वर एवं मानव के बारे में सच्चाई बताते हैं, क्योंकि पिता को कोई नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिससे बेटा बताना चाहे। तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करते हुए कहा, प्यारे मित्रों, जब हम प्रभु को उस प्यार भरे भरोसे के लिए धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने हमें दिखाया है, तो आइए हम शांति की रानी मरियम से प्रार्थना करें कि वे कलीसिया और पूरी दुनिया की भलाई के लिए मध्यस्थता करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न घटनाओं की याद की. सबसे पहले उन्होंने फादर फ्रांसिस जेबियर त्रोंगबो की याद की, जिन्हें 2 जुलाई को धन्य घोषित किया गया. पोप ने कहा,
1: Giovedì scorso, 2 luglio, nel santuario di Thak Sai in Vietnam, è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu.
0: पिछले बृहस्पतिवार 2 जुलाई को फादर फ्रांसिस जेबियर त्रोंग बो को वियतनाम में टाई के तीर्थस्थल पर धन्य घोषित किया गया. उन्हें 1946 में धर्म के नाम पर घृणा के कारण मार दिया गया. जुल्म और हिंसा के बीच उन्होंने लोगों के अधिकारों की रक्षा की और अपने पल्ली वासियों को नहीं छोड़ा. उनकी दुआएं और प्रार्थनाएं आज जुल्म की हालत में सुसमाचार का प्रचार करने वाले सभी लोगों को मजबूत करें. तत्पश्चात देवदूत प्रार्थना के लिए एकत्रित सभी तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए पोप ने कहा, मैं आज संत पेतुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित आप सभी को दिल से अभिवादन करता हूँ. मैं ब्राजील से आए तीर्थयात्रियों एवं वेनेजुएला में मेरिडा यूनिवर्सिटी के गायक दल का दिल से स्वागत करता हूँ. मैं भूकंप पीड़ितों एवं वेनेजुएला के सभी लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ. ईश्वर इस बड़ी मुसीबत के समय उन्हें सहारा दें. पोप ने आगे कहा, मैं खासकर पोलैंड के कई दलों का अभिवादन करता हूँ. क्राकोव प्रांत के कपूचिन पुरोहितों के नए अभिषिक्त पुरोहितों, लोज महाधर्म प्रांत के बच्चे और उनके साथ उनके सहायक धर्माध्यक्ष एवं लेनी का धर्म प्रांत के दल. पोप ने बेलाजो के युवाओं और सिसली के जुबिलेयम गायक दल का भी अभिवादन किया और अंत में सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की.
1: A tutti auguro una buona domenica.

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। प्रेरितिक भवन की बालकनी से लटका बैनर कास्टेल गंडोल्फो के चौक पर जमा हुए विश्वासियों को संत पापा लियो 14वें के आने का इशारा दे रहा था। रविवार 5 जुलाई को संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में देवदूत प्रार्थना का पाठ करने के बाद संत पापा लियो 14वें दोपहर में कास्टेल गंडोल्फो शहर गए। वहां वे सोमवार 27 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियां बिताएंगे। अपने घर की बालकनी से संत पापा लियो 14वें ने स्थानीय समुदाय की खुशी के बदले में कुछ शब्द कहे जो उनके परंपरागत जुलाई में रहने की बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक महीना जो आमतौर पर उनके नियमित प्रतिबद्धता से विश्राम लेने के लिए होता है। गुड इवनिंग कास्टेल गंडोल्फो, संत पापा लियो के ये पहले शब्द थे। धन्यवाद, मैं आपके बीच आकर और अगले कुछ हफ्ते थोड़ा आराम, थोड़ी प्रार्थना, थोड़ी पढ़ाई और उम्मीद है कास्टेल गंडोल्फो में थोड़ा स्पोर्ट करने के लिए बहुत खुश हूँ। एक साथ आना हमेशा एक अहम पल होता है और मुझे खुशी है कि आप सब यहाँ हैं। आपके स्वागत के लिए धन्यवाद और भाई बहन होने के लिए भी धन्यवाद। जब भीड़ ने वेलकम पापा चिल्लाया और तालियां बजाई तो संत पापा लियो ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे उन्हें रविवार या देवदूत प्रार्थना में और शायद किसी और मौके में फिर देखेंगे। संत पापा ने कहा, मैं आपको हमेशा अपनी प्रार्थनाओं का भरोसा दिलाता हूं, लेकिन खासकर आने वाले हफ्तों में ईश्वर हमेशा आपके साथ रहें। संत पापा लियो ने विल्ला नोवा के संत थॉमस पल्ली के पल्ली पुरोहित और समुदाय का भी स्वागत किया, जहां उन्होंने 13 जुलाई 2025 को पवित्र मिसा समारोह मनाया था। आराम के इस समय के दौरान सभी आम दर्शन समारोहों के साथ साथ प्राइवेट और स्पेशल मुलाकातों को भी रोक दिया गया है। संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में आम दर्शन समारोह बुधवार 5 अगस्त से फिर शुरू होंगे। जुलाई में रविवार यह देवदूत प्रार्थना कास्टेल गंडोल्फो के पियासा देल्ला लिबर्ता में होगा। और संत पापा लियो 14वें ने संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय यूकारिस्टीय तीर्थ यात्रा समाप्त होने पर एक वीडियो संदेश में कहा कि यूकारिस्त संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए नई शुरुआत और एकता का जरिया बना रहे और यह देश में कलीसिया को धर्म प्रचार करने और समाज की सेवा करते रहने की ताकत दे। 5 जुलाई 2026 को जारी वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि देश की यूकारिस्तीय विरासत को भुलाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि इससे नई शुरुआत और एकता दोनों का जरिया बनना चाहिए। यूकारिस्त के तोहफे के जरिए अमेरिका में कलीसिया को बड़े समाज के लिए अपनी उदार सेवा जारी रखने की ताकत मिलेगी, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और साथ धर्म प्रचार करने का अपना मिशन भी जारी रहेगा। संत पापा ने इस वर्ष के संस्करण के लिए चुने गए विषय का हवाला देते हुए अपने संदेश में कहा, जब आप 13 मूल उपनिवेशों में से कई से गुजरे तो आपने ईश्वर के अधीन एक राष्ट्र के आदर्श वाक्य के तहत देश के लिए एकता, नवीनीकरण और चंगाई के लिए प्रार्थना की है। ये मतलब मेरे दिल के भी बहुत करीब है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे ईश्वर पर केंद्रित तीर्थ यात्रा देश की सालगिरह के जश्न मनाने का एक अच्छा तरीका है और USCCB और इसे आयोजित करने वाले लोगों को धन्यवाद दिया। उधर कलीसिया के मिशन में डिजिटल मीडिया के बढ़ते महत्व को देखते हुए भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन CCBI 5 से 10 अक्टूबर 2026 तक शांति सदन बेनाउलिन गोवा में नवीन सुसमाचार प्रचार के लिए डिजिटल उपकरण पर 5 दिन का कोर्स आयोजित कर रहा है। कलीसिया की डिजिटल पहुंच को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित यह प्रोग्राम डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सुसमाचार प्रचार में दिलचस्पी रखने वाले पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म प्रचारकों और लोक धर्मियों को एक साथ लाएगा। यह कोर्स क्लासरूम में पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण को जोड़ेगा। जिसका मकसद प्रतिभागियों को डिजिटल के जमाने में सुसमाचार को ज्यादा असरदार तरीके से बताने में मदद करना है। 6 अक्टूबर को सुबह 7 बजे पौत्र यूकरिस्त समारोह के साथ कोष की शुरुआत होगी और यह 10 अक्टूबर को दोपहर के भोजन के बाद समाप्त होगी। कार्यक्रम में नवीन सुसमाचार प्रचार के ई शास्त्र के साथ साथ व्यवहारिक डिजिटल संचार कौशल भी शामिल हैं। सेशन में पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके प्रेजेंटेशन टेक्निक की ट्रेनिंग, कानवा के साथ कलिसियाई संचार सामग्री डिजाइन करना और प्रचार धर्म शिक्षा उपदेश की तैयारी और सामग्री निर्माण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना शामिल होगा। कोर्स बैंगलोर धर्म प्रांत के फादर रिचर्ड डिसूसा देंगे, जिन्हें डिजिटल कम्युनिकेशन और प्रेरितिक प्रशिक्षण का अनुभव है। उधर जून के अंत में जेल के हालात पर छपे एक प्रेरितिक पत्र में कैमरून के डोआला महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष सैमुअल क्लेडा ने देश में जबरदस्ती गायब करने, मनमानी हिरासत और जेल के अमानवीय हालात पर चिंता जताई है। कैदियों के साथ हमारा बर्ताव ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते को दिखाता है। उनकी तकलीफ को नज़रअंदाज करने का मतलब है ख्रिस्त को नज़रअंदाज करना, उनकी तकलीफ कम करने और न्याय वापस लाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने का मतलब है ख्रिस्त की सेवा करना। वाटिकन एजेंसी फिदेस के रिपोर्ट के अनुसार कैमरून के डोआला के महाधर्माध्यक्ष सैमुअल क्लेडा ने जून के अंत में जेल के हालात पर छपे एक प्रेरितिक पत्र में यह याद दिलाया। इस पत्र में, जिसमें संत मती के सुसमाचार में लिखित यीशु की शिक्षा को याद किया गया है, मैं जेल में था और तुम मुझसे मिलने आए, महाधर्माध्यक्ष क्लेडा ने समझाया कि यह पत्र सच्चाई और प्रेरितिक दान के काम के तौर पर था, जो किसी झगड़े की भावना से नहीं बल्कि फर्ज और गहरी दया की भावना से पैदा हुआ था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेतरस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesantpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 5 जुलाई को पोप लियो 14वें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra.
0: आज के सुसमाचार पाठ में यीशु हमें निमंत्रण देते हैं कि हम उनके साथ पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु की स्तुति करें। ईश्वर के पुत्र ने धन्यवाद के इस कार्य में सभी प्राणियों को शामिल करके मनुष्यों को अपना प्रेम प्रकट किया है। संत पापा ने कहा कि इस तरह के सहज एवं प्रशंसित कार्य की सादगी ईश्वर के काम करने के तरीके को दिखाती है। वे खुद को बच्चों के सामने सहज प्रकट करते हैं, जबकि ज्ञानी और समझदार लोगों से छिपाते हैं, क्योंकि वे अपने विचारों से इतने भरे होते कि ख्रिस्त की उपस्थिति को पहचान नहीं पाते जो अपने लोगों से मिलने आते हैं। इस तरह मानव प्रज्ञा घमंड बन जाती है और सिद्धांत अभिमान में बदल जाते हैं।
1: La vera sapienza di Dio si rivela invece nell'umiltà della carne.
0: इसके विपरीत ईश्वर की सच्ची प्रज्ञा शरीर धारण की विनम्रता में दिखती है, और उनकी शिक्षा सबसे बढ़कर उन लोगों के लिए है जो संघर्ष करते हैं। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। संत पापा ने कहा, यीशु के पास जाने का अर्थ है उनके प्यार का प्रत्युत्तर देना और उनके जीवन में सहभागी होना, क्रूस में भी, जैसा कि वे खुद सिखाते हैं। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले।
1: Proprio il dono di sé per amore è il gioco di Gesù.
0: प्यार से खुद को देना ही यीशु का जुआ है, जो उनकी शिक्षा का सार और उनकी प्रज्ञा का केंद्र बिंदु है, जो सभी के लिए प्यार से भरा हुआ है। पोप ने कहा,
1: Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce il peso della croce?
0: भाइयों एवं बहनों, क्रूस का भार कैसे आसान एवं हल्का हो सकता है, या सिर्फ एक कारण से हल्का हो सकता है, क्योंकि प्रभु खुद इससे हमारे साथ उठाते हैं। हमें कभी भी उन बोझों में अकेले नहीं छोड़ते जो हमारे ऊपर हैं। एक सच्चे गुरु के रूप में यीशु बुराई से घायल मानवता को अपने ऊपर लेते हैं, ताकि उसे ठीक कर सकें और उसकी देखभाल कर सकें। इसलिए जो प्रज्ञा वे हमें प्रदान करते हैं वह मुक्ति की घोषणा है, और उनका जुआ हमें हर पतन से ऊपर उठाता है। इसलिए ख्रिस्त का अनुसरण करने की हमारी यात्रा कोई ऐसी तपस्या नहीं है जो दुख पहुंचाती हो, बल्कि यह स्वतंत्रता का स्कूल है जो इतिहास के संकट को गंभीरता से लेता और इसके अर्थ पर लगातार प्रकाश डालता है, खासकर इसके सबसे अंधेरे क्षणों में। वास्तव में सिर्फ यीशु के क्रूस से ही बुराई दूर हो सकती है। केवल उनके जुनून में ही हमारे नश्वर थकान को सांत्वना एवं मुक्ति मिलती है। गुलामी में ख्रिस्त मुक्ति है। युद्ध के संकट के बीच ख्रिस्त ही उम्मीद है। पाप के समय ख्रिस्त माफी है। यही सच्ची प्रज्ञा है और यही वह रास्ता है जिन पर हम उनके नाम पर शिष्यों के रूप में एक साथ चलना चाहते हैं। यीशु पिता के बेटे के रूप में हमारा भाई बनकर हमें इसे सिखाते हैं। पौत्र आत्मा की शक्ति से वे कलीसिया को ईश्वर एवं मानव के बारे में सच्चाई बताते हैं, क्योंकि पिता को कोई नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिससे बेटा बताना चाहे। तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करते हुए कहा, प्यारे मित्रों, जब हम प्रभु को उस प्यार भरे भरोसे के लिए धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने हमें दिखाया है, तो आइए हम शांति की रानी मरियम से प्रार्थना करें कि वे कलीसिया और पूरी दुनिया की भलाई के लिए मध्यस्थता करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न घटनाओं की याद की. सबसे पहले उन्होंने फादर फ्रांसिस ज़ेवियर त्रुंगबो की याद की, जिन्हें 2 जुलाई को धन्य घोषित किया गया. पोप ने कहा,
1: Giovedì scorso, 2 luglio, nel santuario di Taksai in Vietnam, è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu.
0: पिछले बृहस्पतिवार 2 जुलाई को फादर फ्रांसिस ज़ेवियर त्रुंगबो को वियतनाम में टाई के तीर्थस्थल पर धन्य घोषित किया गया. उन्हें 1946 में धर्म के नाम पर घृणा के कारण मार दिया गया. जुल्म और हिंसा के बीच उन्होंने लोगों के अधिकारों की रक्षा की और अपने पल्लीवासियों को नहीं छोड़ा. उनकी दुआएं और प्रार्थनाएं आज जुल्म की हालत में सुसमाचार का प्रचार करने वाले सभी लोगों को मजबूत करें. तत्पश्चात देवदूत प्रार्थना के लिए एकत्रित सभी तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए पोप ने कहा, मैं आज संत पेतुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित आप सभी को दिल से अभिवादन करता हूँ. मैं ब्राज़ील से आए तीर्थयात्रियों एवं वेनेजुएला में मेरिटा यूनिवर्सिटी के गायक दल का दिल से स्वागत करता हूँ. मैं भूकंप पीड़ितों एवं वेनेजुएला के सभी लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ. ईश्वर इस बड़ी मुसीबत के समय उन्हें सहारा दें. पोप ने आगे कहा, मैं खासकर पोलैंड के कई दलों का अभिवादन करता हूँ. क्राकोव प्रांत के कपुचिन पुरोहितों के नए अभिषिक्त पुरोहितों, लोज महाधर्म प्रांत के बच्चे और उनके साथ उनके सहायक धर्माध्यक्ष एवं लेनी का धर्म प्रांत के दल. पोप ने बेलाजो के युवाओं और सिसली के जुबिलेयम गायक दल का भी अभिवादन किया और अंत में सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की.
1: A tutti auguro una buona domenica.

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। प्रेरितिक भवन की बालकनी से लटका बैनर कास्टेल गंडोल्फो के चौक पर जमा हुए विश्वासियों को संत पापा लियो 14वें के आने का इशारा दे रहा था। रविवार 5 जुलाई को संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में देवदूत प्रार्थना का पाठ करने के बाद संत पापा लियो 14वें दोपहर में कास्टेल गंडोल्फो शहर गए। वहां वे सोमवार 27 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियां बिताएंगे। अपने घर की बालकनी से संत पापा लियो 14वें ने स्थानीय समुदाय की खुशी के बदले में कुछ शब्द कहे जो उनके परंपरागत जुलाई में रहने की बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक महीना जो आमतौर पर उनके नियमित प्रतिबद्धता से विश्राम लेने के लिए होता है। गुड इवनिंग कास्टेल गंडोल्फो, संत पापा लियो के ये पहले शब्द थे। धन्यवाद, मैं आपके बीच आकर और अगले कुछ हफ्ते थोड़ा आराम, थोड़ी प्रार्थना, थोड़ी पढ़ाई और उम्मीद है कास्टेल गंडोल्फो में थोड़ा स्पोर्ट करने के लिए बहुत खुश हूँ। एक साथ आना हमेशा एक अहम पल होता है और मुझे खुशी है कि आप सब यहाँ हैं। आपके स्वागत के लिए धन्यवाद और भाई बहन होने के लिए भी धन्यवाद। जब भीड़ ने वेलकम पापा चिल्लाया और तालियां बजाई तो संत पापा लियो ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे उन्हें रविवार या देवदूत प्रार्थना में और शायद किसी और मौके में फिर देखेंगे। संत पापा ने कहा, मैं आपको हमेशा अपनी प्रार्थनाओं का भरोसा दिलाता हूँ, लेकिन खासकर आने वाले हफ्तों में ईश्वर हमेशा आपके साथ रहें। संत पापा लियो ने विल्लानोवा के संत थॉमस पल्ली के पल्ली पुरोहित और समुदाय का भी स्वागत किया, जहां उन्होंने 13 जुलाई 2025 को पवित्र मिसा समारोह मनाया था। आराम के इस समय के दौरान सभी आम दर्शन समारोहों के साथ साथ प्राइवेट और स्पेशल मुलाकातों को भी रोक दिया गया है। संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में आम दर्शन समारोह बुधवार 5 अगस्त से फिर शुरू होंगे। जुलाई में रविवार यह देवदूत प्रार्थना कास्टेल गंडोल्फो के पियासा देल्ला लिबर्ता में होगा। और संत पापा लियो 14वें ने संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय यूकारिस्तीय तीर्थ यात्रा समाप्त होने पर एक वीडियो संदेश में कहा कि यूकारिस्त संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए नई शुरुआत और एकता का जरिया बना रहे और यह देश में कलीसिया को धर्म प्रचार करने और समाज की सेवा करते रहने की ताकत दे। 5 जुलाई 2026 को जारी वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि देश की यूकारिस्तीय विरासत को भुलाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि इससे नई शुरुआत और एकता दोनों का जरिया बनना चाहिए। यूकारिस्त के तोहफे के जरिए अमेरिका में कलीसिया को बड़े समाज के लिए अपनी उदार सेवा जारी रखने की ताकत मिलेगी, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और साथ ही धर्म प्रचार करने का अपना मिशन भी जारी रहेगा। संत पापा ने इस वर्ष के संस्करण के लिए चुने गए विषय का हवाला देते हुए अपने संदेश में कहा, जब आप 13 मूल उपनिवेशों में से कई से गुजरे तो आपने ईश्वर के अधीन एक राष्ट्र के आदर्श वाक्य के तहत देश के लिए एकता, नवीनीकरण और चंगाई के लिए प्रार्थना की है। ये मतलब मेरे दिल के भी बहुत करीब है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे ईश्वर पर केंद्रित तीर्थ यात्रा देश की सालगिरह के जश्न मनाने का एक अच्छा तरीका है और USCCB और इसे आयोजित करने वाले लोगों को धन्यवाद दिया। उधर कलीसिया के मिशन में डिजिटल मीडिया के बढ़ते महत्व को देखते हुए भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन CCBI 5 से 10 अक्टूबर 2026 तक शांति सदन बेनाउलिन गोवा में नवीन सुसमाचार प्रचार के लिए डिजिटल उपकरण पर 5 दिन का कोर्स आयोजित कर रहा है। कलीसिया की डिजिटल पहुंच को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित यह प्रोग्राम डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सुसमाचार प्रचार में दिलचस्पी रखने वाले पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म प्रचारकों और लोक धर्मियों को एक साथ लाएगा। यह कोर्स क्लासरूम में पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण को जोड़ेगा, जिसका मकसद प्रतिभागियों को डिजिटल के जमाने में सुसमाचार को ज्यादा असरदार तरीके से बताने में मदद करना है। 6 अक्टूबर को सुबह 7 बजे पौत्र यूकरिस्त समारोह के साथ कोर्स की शुरुआत होगी और यह 10 अक्टूबर को दोपहर के भोजन के बाद समाप्त होगी। कार्यक्रम में नवीन सुसमाचार प्रचार के ई शास्त्र के साथ साथ व्यवहारिक डिजिटल संचार कौशल भी शामिल है। सेशन में पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके प्रेजेंटेशन टेक्निक की ट्रेनिंग, कानवा के साथ कलिसियाई संचार सामग्री डिजाइन करना और प्रचार धर्म शिक्षा उपदेश की तैयारी और सामग्री निर्माण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना शामिल होगा। कोर्स बैंगलोर धर्म प्रांत के फादर रिचर्ड डिसूसा देंगे, जिन्हें डिजिटल कम्युनिकेशन और प्रेरितिक प्रशिक्षण का अनुभव है। उधर जून के अंत में जेल के हालात पर छपे एक प्रेरितिक पत्र में कैमरून के डोआला महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष सैमुअल क्लेडा ने देश में जबरदस्ती गायब करने, मनमानी हिरासत और जेल के अमानवीय हालात पर चिंता जताई है। कैदियों के साथ हमारा बर्ताव ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते को दिखाता है। उनकी तकलीफ को नज़रअंदाज करने का मतलब है ख्रिस्त को नज़रअंदाज करना, उनकी तकलीफ कम करने और न्याय वापस लाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने का मतलब है ख्रिस्त की सेवा करना। वाटिकन एजेंसी फिदेस के रिपोर्ट के अनुसार कैमरून के डोआला के महाधर्माध्यक्ष सैमुअल क्लेडा ने जून के अंत में जेल के हालात पर छपे एक प्रेरितिक पत्र में यह याद दिलाया। इस पत्र में, जिसमें संत मती के सुसमाचार में लिखित यीशु की शिक्षा को याद किया गया है, मैं जेल में था और तुम मुझसे मिलने आए, महाधर्माध्यक्ष क्लेडा ने समझाया कि यह पत्र सच्चाई और प्रेरितिक दान के काम के तौर पर था, जो किसी झगड़े की भावना से नहीं बल्कि फर्ज और गहरी दया की भावना से पैदा हुआ था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisantpetro.va पर जरूर जाएं।